एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन अर वर्ण जात अर पात नहिन जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत किह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमित तोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहि सहान गणिज त्रिभवन महीप सुर नारे असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत एक मन पुरख त्याए वरदाता संत सहार सदा विखयाता तास चरण ले हृदय बसावा तौ परम गुरु नानक गुण गावा एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख हो सरनाई डिठे सबे थाव नहीं तुद जे हया बद्दो हो पुरख विधाता ता तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाए रामदास सार अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां दे साहु जिस पा

महला पहला सहज मेला मिलिया परवाना नात स्मरण न आवण जान ठाकुर महदास दास महसोय जह देखा तह आवर ना कोय सहज मेला मिलिया परवाना नात स्मरण न आवण जाना ठाकुर महदास दास महसोय जह देखा तह आवर न कोय गुरमुख भगत सहज कर पाइया बिन गुर पेटे मार आइया जाइया रहा सो गुर करो जे साच दृढ़ावा अकथ कथावा शब्द मिलावा हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा तन मह मनुआ मन मह साचा सो साचा मेल साचे राचा सेवक प्रभ का लग पाए सतगुर पूरा मिला मिलाए आप दिखावा आपे देखा हाथ ना पतीजा ना बहु पेखा काड़ पांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत प्रभ मन पति आया पड़ पड़ भूला है चोटा खाए बहुत सियाणप आवह जाए नाम जप पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिलां तीर्थ बन वासा परमत डोलत पाए उदासा मन मैला सूचा क्यों होए साच मिला पावे पत सोए आचारां विचार शरीर आदि जुगाद सहज मन तीर
పాల పంకజమ పాల పంకజమ కోట ఉదారే కర కృపా గోర మేల ప్యారే కేస ఆగ ప్రభ తుద సాలాహీ తుద విన దూజా మై కో నాహీ జ్యోం తుద పావన్ ਤੇਉ ਰਾਖ ਰਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਿਸ ਆਗੈ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਸਾਲਾਹੇ ਤੁਧ ਵਿਨ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾਹੀ।

जे सह प्रीत न जाए। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाहो नेह चल चोर छत पौड़ी।

शरण परे की रखो शर्मा, एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं। कबयो बाच बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की अच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब बैरन कौ आज संगरिय। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम हे शाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूधियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान। जब युद्ध करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह तर सब हो। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आपे अपनी भूज उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भीव न पावत बेदा। ताकाउ कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव। आपे अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवै बैठा, कहूँ सिमट भयो संकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख अवार असिख संघरो। दुष्ट जते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे।
पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार तै है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जहे निहर हो, ताके ताप तन कमह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वय सकै न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठार मोह हो सहाई, दुष्ट दोख तेले हो बचाई। खड़ग के तमै शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठार मोह हो सहाई, दुष्ट दोख तेले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं अन्यों। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यों। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे, हम एक न जान्यों। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कै गहियो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कै गहियो तुहारो

अपने सुख से ही जग फंदियो, को काहू को नाही। प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख से ही जग फंदियो, को काहू को नाही। रहे सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिस के विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत

जब ही हंस तजिय काया प्रेत प्रेत कर भागे एह विद को व्यवहार बनयो है जासे उन्हें हो लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को काम न आयो एह बिद को व्यवहार बनयो है जासे उन्हें हो लगायो अंत बार नानक बिन हर जी।

जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर भागी, एह विद को व्यवहार बनयो है, जा स्यों नेहो लगायो, अंत बार नानक बिन हर जी को कामना आयो। एह बिद को व्यवहार बनयो है, जा स्यों नेहो लगायो, अंत बार नानक बिन हर जी।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरना।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद असा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी श्लोक

0: जन्म गवाया वेच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया। सच्चा साहिब एक तू जिनी सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सहायता तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिन कै हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया।
1: एक बार सा

0: हर भगत भंडारा, भगत भंडारा।
1: श्लोक महला पहला। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पैननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए खार।

थोड़ी तुर कर्म जना को तुद पाया तातिनी खसम त्याया ना जनता के वास के छना है तुद वे की जग तू पाया एक नानो तू मेला एक आप तुद खुवाया गुरु कृपा ते जाने जिते तुद आप बुझाया सहज ही सत समाया सहज ही सत समाया।

0: जो कुछ करना सो कर हम हल्ला दूजा।
1: जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने पेयो नानक ताका दास है सुई निरंजन देव महला दूजा।
0: हे कृष्णन सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बस दिवस जे को जाने पेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
1: कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होवे गुणे का ता उम्मी साधन मारिए जिहा काले कालेना देवे हो नाउ पचारिए।

शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साज रहे सबको सच समय रिग कहे रहे भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय लिया प्रश जय नानक तो मखन त्रिपाए जुज मैं जो छली चंद्रावल कान किसन जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन मह रंग किया कल मह बेद थरबन हुआ नाव खुदाई अलहो पया नील बस्त

0: फल फिके फल बक बके कम न आवे पत मिठत नीवे नानका गुण चंगाइयां तत सब को निवे आप को पर को निवे ना को तरत रज तो लिए निवे सुगौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गा शीस निवाया क्या थी है जर देख सुदे जाय महला पहला
1: पाड़ पुसक संध्या बादन सिल पूजस बगल समाद मुख चूट भी पुखंग सारं त्रैपाल ते हाल बिचारं गल माला तिरकलेला टंग दे तोती बस कपाटं जी जानस ब्रह्मं कर्मं सफो कट नेचो कर्मं कौ नानक नेचो ध्यावे विन सतगुरु बाट

आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछे आरे आयत। देग तेग फत हे विरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु।

0: दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट हिजने उजी काहिता भांडे कत नाहे तुटे ना मल लगे नाहे जले ना जाए तन सुमान स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मुलन आया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पया बेतगा गया महला पहला
1: लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख गा लठ गया पे नामिया राधन जिना तग पहु कतिया बामन वटे आए कोई बकरा रिण खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुट्टी है पी फिर

बोड़ी साहब हुए दयाल, कृपा करे ता साई कार कराईसी, सौ सेवक सेवा करे जिसने हुक्म बनाईसी, हुक्म मन्या होवे प्रमाण ता कसमै कम हल पाईसी, कसमै पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाईसी, तां दरगह पैदा जायसी, तां दरगह।

0: अंतर पूजा पढ़े कते बा संजम तुर का भाई छोटी ले पाखंडा नाम ले जय त्रंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री बगैर तिन गल ताल।

0: जे महाता कर्म है कर्म पितरी दे, अगे बस सियाणी है पितरी चोर करे, वड्डी है हाथ दलाल के मस्ती है करे, नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला।
1: ज्यों जोर सिंढावनी आवे वार वार, जूठे जूठा मुख सै नित धोए खुआ, सुचे एह ना आखी है बैण दे पिंडा धोए।